गैमा बिगा मागीले झुझुई चिरा कहाँ मैले बिराए भानी कि मेरा दुई बाहु माता ठोकी दे जन्म बाप्ला तेरो अनि तो करना दुरी तो धमको भतुआ।

0: नारायण कुलदेव था कि हुन्छ भनिकन पर्याप्त सारा त्यतिखेरको समयमा के थियो अब
1: नाम त ईश्वर कुमारी सी भन्नाले हो नाम त ईश्वर कुमारी सी भन्नु नहेर्न गए मजो बना सलालाला सलाला भगिन ए मुना सलालाला सलाला भगिन ए मुना भगिन ए मुना हेर भगिन ए मुना सलालाला सलाला भगिन ए मुना

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: पाउन त
1: हजुर हुन्छ बा सुन्नुहोस् है त
2: दक्षिण भारतका प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिङ्ग तथा तीनधाम यात्रा हुँदैछ प्रमुख दर्शनीय स्थलहरू नेपालतर्फ जनकपुर धाम लुम्बिनी कपिलवस्तु सेजी सातचो धाम नवलपरासी देवघाट धाम चितवन पशुपतिनाथ काठमाडौँ भारततर्फ हरिहर क्षेत्र तर्पण पटना मातृ मोक्ष पिण्डदान पुन पुन महाश्रद्धा स्थल गयाजी विष्णुपद दर्शन बैतरणी नदी स्नान तर्पण वैद्यनाथ धाम शिव सागर पञ्च स्नान गंगा सागर तथा कपिलमुनि र कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली दर्शन जगन्नाथपुरी साक्षी गोपाल दर्शन सागर स्नान मल्लिका अर्जुन श्री शैलम तिरुपति बालाजी श्री रंगम कावेरी रामेश्वरम दर्शन वैस्कुण्डा स्नान कन्याकुमारी लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मन्दिर दर्शन भीमा शंकर श्री एम्बकेश्वर श्रीडी साई बाबा ग्रीष्मेश्वर दर्शन नर्मदा नदी स्नान ओमकारेश्वर ममलेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन चोटिला चामुण्डा भगवती द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान नागेश्वर गोपी तलाउ भेट द्वारका बिन्दु सरोवर मातृ गया पिण्डदान पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म सरोवर अम्बा देवी दर्शन वृन्दावन मथुरा गोकुल रमण रेती काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान चौरासी घाट दर्शन प्रयागराज अन्तिम गंगा स्नान श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश खान बस्न अटो रिक्सा डुङ्गा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ समय अवधि 42 दिन रहनेछ प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी सम्पर्क नम्बर 9841870793 9841870793 सादो बाटो चरीको दोलाखा

0: अन्ठाउन्न त्रिसठी र अन्ठानब्बे छैसठी शून्य उन्नाइस पाँच सय छयत्तर। गोविन्द प्रसाद रिमाल सचिव खकालेश्वर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बैटेश्वर गाउँपालिका सात मार्बु दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: विशाल श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ में सादर निमंत्रणा। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा को आयोजना में धर्म जागरण पितृमोक्ष सत्संग भवन निर्माण र दैविक प्रकोप विपद कोष स्थापना को पावन उद्देश्य सहित श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ को भव्य आयोजना हुन गइरहेको छ। यस महायज्ञमा विशिष्ट वक्ता प्रमुख वाचक पण्डित श्री दिलीराम गौतमज्यूको मुखारविन्दबाट सुमधुर संगीतमय भजन कीर्तन र कथा प्रवचन श्रवण गरी तन मन र धनको पुण्य कमाउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनुहोस्। कथा आरम्भ मिति विक्रम सम्बत 2083 साल अश्विन 25 गते आइतबार। सम्पन्न हुने मिति विक्रम सम्बत 2083 साल कार्तिक 2 गते सोमबार। समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती। थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापन का लागि सम्पर्क 9852445779, 9849924909, 9844994913, 9141699945, 9844446550। आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बैनी थोप्लो 7 मेगाहर्जबाट म बजे प्रसाद साहबको त आज विक्रम सम्बत 2083 छ आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन् 2026 अक्टोबर 9 तारिक आश्विन 23 गते शुक्रबार चतुर्दशी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया साक्षेण कल्पय भरी

नगाड़ेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।

सीताजी कन भेटी फर्काउला फेर हमका हजुरमा गई विस्तार बिन्ती गरेर आई पसौला तिम्रो आहार भई। यति बात सुनि भन्दा चिन्ती सुरसा मेरा मुखैमा पसी निस्कि जाऊ नै भने म बलले पक्रेर दरा घसी। भोकी मैलिँदा उरिन त कपाल खोरे कि केसाबुसाई लट्टा मात्र परे कि खाली भूमिमा रुँदै बसे कि तसाई राम चित्त दिएर मर्नु बढिया मानेर सीता कहाँ जन्ने नि मतलब लिई खरी भैनी पक्रेर गई महा। एक दिन हनुमान म चित्रकुटमा रामका नजिकमा थिया।